0: सैन्य समुदायमा
1: रिलायन भरि
0: अन एयर
1: एपमा
0: अनि स्मार्ट स्पिकरमा भन्नुहोस्
2: फ्लाइ बीएफपीएस।

Express Gorkha Radio. Gorkha Radio. Now, Lipani Maragudu, you get Santi Sri Pariyari Sigari Prasan Siva Kutikawas Ma. PFP's Gorkha Radio Sunyanunza, Rakari Kramala Hami Chong Gudaliko, you Pilkanta Ma, Sami, Pass Basakalaki Babani, Tera, Minute Bakirekusam, Isigari no Luk Duri, Sornim Sach, Yunakarekusam, Jasmata Pepini Bokke, Jana Saknunza, Enjoy Karna Saknunza, Pishisgari Yuzi, Luk Duri, Jositi, Yogi, Yo John Rocco, Lovers Arununza, Tabarle, Ek. तमें जो करना सकनुं जाए कि नहीं कि ऐसी इतनी देरे कलाकार और कुछ प्रस्तुति होना गए रहेगा सा ये तो मौका था बारंबार आऊं देना पके बने मिस ना करना उस पर ना चाहन्सु इरा योची 30th of May मा होना गए रहेगा सा सटे को दिन इरा वेनिचे एम्पायर बैंकुटिंग हॉल मा होना गए रहेगा सा ऑल्टरशॉट इरा समिति दिवस को सारे दो बजे देखिए होना करेगा सा टिकट प्राइस ही एडवांस में किन्नु बाय बनी 20 पाउंड्स इरा डोर में किन्नु को खाने में 25 पाउंड्स रहने सम इरा जो जती 6 टू 12 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन लाइफ 15 पाउंड्स इरा साथ ही सीनियर सिटीजन सर्कुलर लाइफ बनी 15 पाउंड्स रहेगा सा कार्यक्रममा रद्द गर्नुहोस् सब पनि पालो फेरि पनि अर्को गीतको आइसकेको छ यो समयमा म राख्ने नै छु एन्जोय गर्नुहोला श्रोता सुजन सब गाई र यसै गरी